नानक हो मान दूर मत सियो नानक फादियो राख ले ओ भगवान बाल जुआनी आर बीर दफून चीन अवसता जान कहो नानक हार भजन बिन बीरता सब

छूट है सब खिच हो तो उपाय नानक सब खिच ठुमर हाथ में ठुम ही हो तो सहाय संग सखा।

अरदास मारी जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी बड़ियाई कोई ना ओ ना जाने मेरा अरदास कोंखा श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाहे श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम गोती सिमर के गुरु नानक ले त्याय फिर अंगिर गुरते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाओ सिमरो श्री हराय श्री हर कृष्ण दियाई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नो निद आवे दाय सब ठाए होए सहाय जसवा

एकंकार सतगुरु प्रसाद देहरास हर जुग जुग भगत उपाय फेज रखदाय राम राजे हर नाकश तुष्ट हर मारिय प्रलाथ राय अहंकार निंदक प्रत्य नाम ज्यो मुकलाय चल नानक असहार सेव्या आंत ले चढ़ श्लोक में लपेला दुख दारु सुख रोग भया जस सुख तम न होय तुम खाट कर्ण में नाही जाहु करी न होय पलहारी खुरित वास्या थिर अंतन जाई लाख रहाओ जात में ज्योत ज्योत में जात अखाल कला बर पूरा हिया तुम सच्चा साहिब सिफत स्वालियो जिनकी ती सो पर पाया खोल नानक काट क्या बता जो कुछ कर्ण सो कर रहिया सोदरागा समय लपेला एक ओंकार सदगुरु प्रसाद।